0: ओ निर्गाजी भाइ कता हो? केटाहरू लिएर पुरा बेहुलिम जानु ल है के हो?
1: होइन हो दाजु, माथितिर यसो गाउँतिर पुगौँ कि भनेर। ल दाजु, टाइम पनि छैन, लाग्यो है त।

0: ओ निर्गाजी भाइ कता हो? केटाहरू लिएर पुरा बेर्लिन जानुलाई है के हो?
1: होइन हो दाजु, मासितिर यसो गाउँतिर पुगौँ कि भनेर। ल दाजु, टाइम पनि छैन, लाग्यो है त।

सबै राम्रो सधैँ हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैँ सुन्नुहोला।